0: 20,000 नाविक और 2,000 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बीबीसी की मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट योलान नेल इस वक्त यरूशलम में हैं और वो ईरान की प्रतिक्रिया पर और जानकारी दे रही हैं।
1: Well, already the Iranians have denounced President Trump's announcement.
2: ईरान पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान और उनकी योजना की निंदा कर चुका है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने भी कहा है कि इसे युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में साफ किया है कि वो ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखेगा। इससे ईरान के तेल निर्यात की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है और उसकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ा है। उनका कहना था कि ऐसे हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से टकराव की आशंका बनी हुई है। साथ ही इससे अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच 3 हफ्तों से चल रहा युद्ध विराम भी खतरे में पड़ सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना को कैसे लागू किया जाता है। अमेरिकी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि सेंट्रल कमांड ने ये नहीं बताया कि वो अपने वॉरशिप्स और जेट्स वगैरह का इस्तेमाल कैसे करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सीधे तौर पर जहाजों को एस्कॉर्ट नहीं करेगा, बल्कि अमेरिकी नौसेना सलाह देगी, अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षित समुद्री रास्तों के बारे में बताएगी। वो ऐसे इलाकों की पहचान करेगी जहां ईरान ने बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई हैं। वो अपनी नेवी को आसपास ही तैनात रखेगी।
0: और इन सब के बीच ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने ईरान में सरकार पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने, टॉर्चर करने और फांसी देने के आरोप लगाए हैं। देश के अंदर भरोसेमंद सोर्सेज की मदद से बीबीसी ने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो अब भविष्य को लेकर डर के साए में जी रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट।
3: इस हकीकत से बचा नहीं जा सकता कि ईरान की हुकूमत बची रह गई है और उसकी मौजूदगी हर जगह दिखाई देती है। सड़कों पर ऊपर ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इस यंग कपल जैसे कई लोगों के लिए उम्मीद अब निराशा में बदल रही है। इनकी बातचीत यहाँ बदली हुई आवाज में सुनाई जा रही है।
4: हालात बदलेंगे, ये पहले ही बदल चुके हैं।
5: बदल गए हैं। देश रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में चला गया है। देश पूरी तरह बिखर चुका है। शुरू में मैं नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध के दौरान जब तक वो अहम लोगों को निशाना बना रहे थे तो हर मौत पर मुझे वाकई खुशी होती थी। लेकिन सच ये है कि उनके बहुत से लोग अब भी जिंदा हैं। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। सब कुछ और खराब हो गया और हम उसी हुकूमत के साथ रह गए। मुझे बहुत दुख है कि उन्होंने जंग जीत ली। मैं इस्लामिक रिपब्लिक को अपना दुश्मन मानती हूँ।
3: सरकार अब भी अपने विरोधियों को मार रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से 21 राजनीतिक कैदियों को फांसी दी जा चुकी है, जैसे 18 साल के अमीर हुसैन हातामी, बाबक अलीपुर, पुया गोबादी और अमीर अली मीर जाफरी।
2: ये जनवरी में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में से एक थे।
3: सुजैन एक वकील हैं जो गिरफ्तार लोगों के लिए काम करती हैं और उन्हें डर है कि हालात और खराब होंगे।
2: युद्ध से पहले सिर्फ उनके साथ सख्ती बरती जाती थी जो प्रदर्शन की अगुवाई करते थे, जिनके पास आग लगाने वाले सामान या हथियार होते थे। मगर युद्ध के दौरान ये सख्ती बहुत बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ कि जंग खत्म हो, लेकिन फिर भी लगता है कि युद्ध खत्म होने पर सरकार कैदियों पर गुस्सा निकालेगी। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। मैं सच में भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचती।
3: ईरानी हुकूमत आत्मविश्वास दिखा रही है, लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर उलझन में है कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए। आर्मेन एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। वो भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि अब ईरान की सरकार और भी खुलकर किसी को भी दुश्मन बताकर निशाना बना सकती है।
6: मैं खुद रात भर ये सोचते हुए जागता रहता हूँ कि भविष्य में क्या होगा। यही बात डर पैदा कर सकती है। पहले हम पर राजनीतिक अपराध का आरोप लग सकता था, लेकिन अब युद्ध के हालात में युद्ध की रिपोर्टिंग करने पर भी जासूसी का आरोप लग सकता है। पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितने लोग प्रभावित हुए या इन प्रदर्शनों का क्या असर होगा, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब हमारा ध्यान सिर्फ खुद को और अपने परिवार को जिंदा रखने पर है।
3: ये याद दिलाता है कि खतरा कितना ज्यादा है।

0: ये स्मारक उस नौजवान की याद में है जो पहले हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारा गया था। जब दुनिया ये सोच रही है कि जंग खत्म करने के लिए फिर बातचीत शुरू होगी या नहीं, तब भी ईरान की हुकूमत का लोगों की जिंदगी और मौत पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट।
1: और रुख करते हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्से का, जहां लंबी जंग के बाद शांति तो आई है मगर लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गजा में बेघर हुए फलस्तीनियों के बीच बीमारियां फैला रहे हैं चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े। दरअसल दो साल इसराइल और हमास के बीच चली जंग के बाद यहां का करीब 20 लाख लोग अब टेम्पररी कैंप्स में रह रहे हैं। ऐसे में कैसे हालात हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की रिपोर्ट।
2: जंग से तबाह गजा में बीमारियां फैला रहे चूहों और दूसरे कीड़ों से अब हर रोज नई लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एड एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लोगों से भरे हुए कैंपों में सेहत को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। 4 साल की मयासीन अब बुखार और बीमारी से उबर रही हैं। उनकी मां का कहना है कि उन्हें एक नेवले ने काट लिया था।
3: हम रात 2 बजे उसकी चीख सुनकर उठे। जब पति ने टॉर्च जलाई तो नेवला भाग गया। मैंने उसका हाथ देखा, खून से सना था, हर जगह खून था।
2: 1 महीने का ये बच्चा भी बाकी कई बच्चों की तरह चूहों के हमले का शिकार हुआ है। डायबिटीज से जूझ रही एक बुजुर्ग की पैर की उंगलियों का हिस्सा चूहों ने काट लिया। गजा में हुआ कमजोर संघर्ष विराम अब तक लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा सुधार नहीं ला पाया है। टेंट के पास से सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे ये जगह चूहों के पनपने के लिए मुफीद हो गई है। ये चूहे लोगों के अस्थायी घरों के पास पड़े कचरे के ढेरों में तेजी से बढ़ रहे हैं। कई माता पिता बच्चों को चूहों और नेवलों से बचाने के लिए रात भर जागते हैं।
4: हम सो नहीं पाते, ये कचरे के ढेर में जाकर आपस में लड़ते हैं क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सच कहता हूँ, अब इसे सहना मुश्किल हो गया है।
2: सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जरूरी सामान जैसे केमिकल और पाइप इसराइल की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गजा में आने नहीं दिए जा रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो सफाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएन की एजेंसियों का कहना है कि और ज्यादा काम करने की जरूरत है।
5: जरूरत है बड़े स्तर पर एक अभियान चलाने की ताकि पूरे गजा में कचरे और मलबे की समस्या से निपटा जा सके। पाइप तबाह हो चुके हैं और ट्रीटमेंट करने वाली जगहें भी तबाह हो गई हैं। इसलिए हम गंदे पानी और सीवर को संभालने के लिए सपोर्ट बढ़ा रहे हैं।
2: गजा के लोग खुद ही चूहों की बढ़ती संख्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया है। अब गर्मियां आने के साथ ये समस्या और बढ़ने की आशंका है। 2 साल की जंग झेल चुके लोगों का कहना है कि हालात अब बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता योलांद नेल की रिपोर्ट।
1: और यूरोप के देशों के नेता आर्मेनिया पहुंचे हैं। इस रीजन में रूस के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले देश में पहली बार 2 समिट हो रहे हैं। एक तो है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का समिट और दूसरा है पहला ईयू आर्मेनिया समिट। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में इकट्ठा हुए इन नेताओं ने दुनिया में मची उथल पुथल, अमेरिका से अपने रिश्तों और सिक्योरिटी के नजरिए से आपस में तालमेल बिठाने पर जोर दिया। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्जुला वॉन डे लेन ने कहा कि यूरोप को अपनी सेना की क्षमता बढ़ानी चाहिए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि महाद्वीप को हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। और यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की स्थापना यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हुई थी। हालांकि येरेवन में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस के मुताबिक अमेरिका का रवैया इस समिट पर भारी पड़ रहा है।
6: हमने देखा है कि यूरोप की सिक्योरिटी की तरफ अमेरिका की दिलचस्पी कम होती जा रही है। हमने यहाँ नेताओं की बैठक के दौरान जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ट्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए विवाद को लेकर चिंता देखी। ये विवाद तब हुआ था जब जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई रणनीतिक लक्ष्य नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों के साथ साथ उन लंबी दूरी की मिसाइलों को भी हटा लिया जिन्हें रूस की ओर से किसी हमले की आशंका से निपटने के लिए तैनात किया गया था। इस समिट को यूक्रेन पर रूस के पूरी फोर्स के साथ किए गए हमले के बाद शुरू किया गया था। मकसद ये था कि ज्यादा खुलकर चर्चा हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं इसके पीछे माहौल अशांत बना हुआ है।
1: और कई सालों से माना जाता रहा है कि मेड इन चाइना का मतलब होता है सस्ता माल जो थोक में बनाया गया हो, लेकिन कई सारे चाइनीज ब्रांड्स की नई जनरेशन ने दुनिया भर में लंदन से लॉस एंजलिस तक ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, लेकिन ऐसा हुआ

0: कैसे? बता रही बीबीसी संवाददाता सुरंजना तिवारी सिंगापुर से इस खास रिपोर्ट में।
1: न्यूयॉर्क में कॉफी चेन हो या फिर टोक्यो में खिलौने की दुकानें और अब लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर फ्लैगशिप स्टोर तक, चाइनीज ब्रांड्स हर जगह हैं। मॉली टी की शुरुआत महज 4 साल पहले ही शेंजेन में हुई थी। अब दुनिया भर में इसके 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं।
2: This is one of Molly Tea's.
1: चीन के बाहर मॉली टी का सबसे बड़ा आउटलेट यहाँ सिंगापुर में है। अपने कल्चर, कस्टमर्स के खर्च करने की क्षमता और कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ सिंगापुर चाइनीज कंपनियों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। यहाँ इसकी शुरुआत कीजिए और फिर पूरी दुनिया तक इसका स्वाद अपने आप पहुँच जाएगा। कुछ ऐसी ही दुनिया की सबसे बड़ी हॉटपॉट चेन ने भी किया। हाइडेलाओ के 14 अलग अलग देशों में 1300 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। कंपनी अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपनी सप्लाई चेन, बेहतर सर्विस और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पर दिए गए फोकस को देती है।
3: अब ये रेस्टोरेंट्स इमिग्रेंट रेस्टोरेंट्स की बजाय ब्रांड रेस्टोरेंट्स के मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि ये दूसरे देशों में मौजूद चाइनीज रेस्टोरेंट्स में एक बड़ा विकास है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में हमारे एक रेस्टोरेंट में 50% से ज्यादा कस्टमर्स एशियाई नहीं है।
1: सालों से पश्चिमी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाने से चाइनीज कंपनियों को वो महारत हासिल हुई जिससे वो अपना खुद का वैश्विक नाम बना सके। लबूबू डॉल्स बीते कुछ सालों में ऐसी ही एक बड़ी उपलब्धि रही है जिसने दिखाया कि कैसे चाइनीज ब्रांड्स को लेकर सोशल मीडिया एक्साइटेड रहता है। मिनेसो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। इसके 110 देशों में स्टोर्स हैं और बच्चों की फिल्मों के कुछ बड़े कैरेक्टर्स का लाइसेंस भी इनके पास है।
4: कस्टमर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड्स कहां से आ रहे हैं, उनका ज्यादा ध्यान शॉपिंग एक्सपीरियंस पर होता है। क्या मुझे उनके प्रोडक्ट्स के डिजाइन पसंद आ रहे हैं, क्या उनके सामान किफायती है या नहीं।
1: नई जनरेशन के मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स अब बहुत आगे निकल चुके हैं। हालांकि ये फर्क इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। BYD टेस्ला को पछाड़ कर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।
5: दशकों पहले आप चाइनीज ब्रांड्स इसीलिए जानते थे क्योंकि वो सस्ते थे, लेकिन अब अगर हम BYD जैसी कंपनी के प्रोडक्ट देखें तो उनकी क्वालिटी बेहतरीन है। उसके साथ ही मार्केटिंग में आती है इमोशनल स्टोरी टेलिंग और साथ ही इसका आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से गाड़ियां बनाना भी।
1: लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं, टैरिफ से लेकर राजनीतिक जांच पड़ताल तक, और ये सवाल है कि कैसे कुछ ब्रांड्स इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अगर ये ग्लोबल स्टेज पर बराबरी जीत सकते हैं तो ये ना सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाएगा बल्कि ये उस चश्मे को भी बदल देगा जिससे दुनिया चीन को देखती है। BBC संवाददाता सुरंजना तिवारी की रिपोर्ट।
0: और अब दुनिया भर की कुछ और अहम खबरें BBC ग्लोबल राउंडअप में। एक क्रूज शिप के डच ऑपरेटर ने कहा है कि उन्होंने अपने यहां से 2 बीमार यात्रियों को बाहर निकालने की इजाजत मांगी है। माना जा रहा है कि शिप में हंटा वायरस फैला है। MV होंडियस नाम के शिप पर सवार 3 लोगों को सांस की गंभीर बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। WHO का कहना है कि मरने वालों में से कम एक में हंटा वायरस होने की पुष्टि हुई है। यह वायरस आमतौर पर चूहों से इंसान में फैलता है। UAE ने कहा है कि मार्च महीने में दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या घटकर 1/3 रह गई है। ऐसा ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से हुआ है। दुनिया के इस सबसे बिजी एयरपोर्ट को जंग के दौरान कई बार टारगेट किया गया। अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान UAE को निशाना बनाता रहा। फिलीपींस में एक ज्वालामुखी में हलचल के बाद हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाना पड़ा। माउंट मायो से शनिवार को बड़ा सा राख का गुबार उठा। इस वुल्कानो की ढलान पर बसे करीब 5,000 लोगों को शेल्टर्स तक पहुंचाया गया। और क्या आप एक ऐसे अलग तरह के एक्सपेरिमेंट में शामिल होना चाहेंगे जो दक्षिण कोरिया के सोल में हुआ? वहां हान नदी के किनारे एक पार्क में लोग इकट्ठा हुए सोने के लिए। माना जाता है कि काम का बोझ होने की वजह से यहां के लोग ठीक से सो नहीं पाते और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए उन्हें यहां सुलाया गया और सोते वक्त इनका हार्ट रेट भी मॉनिटर किया गया ताकि ये पता चल सके कि ये ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। और BBC दुनिया में आज इतना ही। कार्यक्रम पर आप मुझे फीड
6: बिल्कुल जी बहुत

0: इस हॉलिडे सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलिगरी एयरपोर्ट ते खुशियां दी शुरुआत हो रही है। अपनी क्रिसमस पार्टी बुक करो अते पाओ हॉल रेंटल ते 50% छूट,
1: कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव सेटअप,
0: रूम्स बुकिंग ते 15% छूट,
1: अते हर गेस्ट ले एक ग्लास शैंपेन फ्री।
0: हर वीकेंड साडे बॉलीवुड नाइट इंडो चाइनीज बुफे दा मजा लवो सिर्फ $27.99 विच।
1: इस दे विच है बिरयानी अते लाइव डोसा स्टेशन। अपने परिवारिक छुट्टियां बनाओ होर खास, डबल क्वीन रूम ब्रेकफास्ट समेत सिर्फ $129 विच।
0: इस दे नाल बुफे ते 15% छूट, स्पा ट्रीटमेंट ते 10% छूट, सेलिब्रेट स्टे एंड डाइन ऑल अंडर वन फेस्टिव रूफ।
1: आज ही कॉल करो 403-475-1111 ते
0: अते रेडिसन कैलगरी एयरपोर्ट ते अपनी हॉलिडे मैजिक बुक करो। रेडिसन, जिथे खुशियां रोशनी बन के खिलदियां हन।
2: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application, ate Citizenship Application vich lamba tajruba ate maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi, main Maninder Singh Dhillon ate Inderjot Kaur Dhillon ikko chhat heth Immigration ate Insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Dhillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
3: Regulated Canadian Immigration Consultant.
1: 403-400-0203
4: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM.
5: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m.
4: Visit sabarang.ca.
6: See, sun rahe ho, Sabarang Radio 94.7 FM.
7: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
8: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
7: हुण तुसी उना नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
8: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
7: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक। वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
8: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
7: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।

0: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल जी, ये लाइफलाइन क्लिनिक जड़े है एडी दे विच काफी वधिया तरीके दा काम कर रहे ने डॉक्टर शाह ते डॉक्टर रहमान जड़े ने लेडी डॉक्टर ने, ते इन्हां वल्लों काफी काम किते जा रहे ने। तुसीं इन्हां दे नाल संपर्क कर सकदे हो ते देख सकदे हो वी की कुछ जड़ा चल रहा अपनी सेहत नूं होर वधिया तरीके नाल अगे लैके जा सकदे हो। सो सेहत दी गलबात चल ही रही है ते जहरीले रसायण जड़े हुंदे ने उन्हां दे खिलाफ मावां वल्लों एक अभियान चलाया जा रहा। तो की है अभियान थोड़ा जा, क्योंकि सेहत जान है तो जहान है, जो जान ही जाती लगेगी तो डेफिनेटली सारा कोई जो अपसैट हो जाता। एक खबर है शेयर करते हैं तो फिर इस तो बाद बाकी दी गल्लां बताते हैं।
2: ये माएं एक केमिकल प्लांट के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन पर हैं, जो उनके पानी, उनकी सेहत और उनके बच्चों के भविष्य पर खतरा है। इस प्लांट से फॉरएवर केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें पीफास भी कहा जाता है।
3: ये माँ के शरीर से उसके बच्चों में जाएगा।
4: क्या हम खड़े होकर अपने बच्चों को तड़पता देखते रहेंगे?
2: पीफास संक्रमण की ये दास्तान उस वैश्विक रसायन संकट का हिस्सा है जो हजारों किलोमीटर दूर इटली में शुरू हुआ था। यूरोप से एशिया तक स्थानीय समुदायों के आंदोलन भड़क उठे हैं, जिनकी अगुवाई माएं कर रही हैं। समाधान मौजूद हैं, लेकिन उनकी बात करने से पहले आइए PFAS इस पीफास घोटाले को समझते हैं। अत्यधिक मजबूत कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वाले 10,000 से ज्यादा रसायनों के समूह को पीफास कहते हैं। वे आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि कपड़ों को जलरोधी और टेफ्लॉन के बर्तनों को ताप झेलने लायक बनाने जैसे मुश्किल काम भी कर लेते हैं। वे कमोबेश हर चीज में हैं, फास्ट फूड पैकेजिंग से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक में वे हमेशा जस के तस रह सकते हैं। तो एक बड़ी समस्या तब आती है जब उन्हें ठीक से ट्रीट न किया जाए, पर्यावरण में उड़ेल दिया जाए। पीफास नदियों में, भूजल में और मिट्टी में पाए जाते हैं। वे पीने के पानी, भोजन या घर की धूल तक से जानवरों के भीतर और हमारे शरीरों में भी पहुंच जाते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोगों के खून में पीफास मिलते हैं। वैज्ञानिक उनके दूरगामी दुष्प्रभावों को अभी समझ ही रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में भी पीफास से कैंसर, हार्मोन गड़बड़ी, रोग प्रतिरोध में कमजोरी और वृद्धि में रुकावट की आशंका हो सकती है। इटली की ये माएं सालों से इसका विरोध करती आ रही हैं। उनकी सफेद टी शर्ट प्रतीक बन चुकी है, जिस पर उनके बच्चों के नाम और उनके खून में मिले पीफास के स्तर अंकित हैं। जियोवाना और मिकेला ने यहाँ ये आंदोलन शुरू किया।
5: 2017 में मैंने पाया कि मेरी बेटी के खून में ये पदार्थ मौजूद हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पीफास स्तर वालों में वो भी एक है।
2: उनके गाँव से चंद किलोमीटर दूर मितेनी केमिकल्स नाम की कंपनी का ठिकाना था, जिसका सारा गंदा पानी गांव पहुंचता था। 26 साल पहले शहर की नौकरियां छोड़कर जियोवाना और उनके पति बच्चों समेत यहां आए। उन्हें लगा कि गांव की आबोहवा पांचों बच्चों के लिए सेहतमंद होगी।
3: हमें ऐसा लगा कि हमारे पास एक बम है, हमारे बच्चों के शरीर में एक बम है जो कभी भी फट सकता है और दुर्भाग्य से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
2: कंपनी से निकलने वाले पीफास ने जमीन को यहाँ से लेकर समंदर तक दूषित कर दिया। प्रदूषण का सार्वजनिक रूप से 2013 में तब पता चला जब वैज्ञानिकों ने पानी की जांच की। तब तक करीब 3.5 लाख लोग उसकी चपेट में आ चुके थे, कुछ तो सालों से चपेट में थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर व्यापक चिंता फैल गई और बड़े पैमाने पर खून की जाँच की जाने लगी। एक अध्ययन में गुर्दे, टेस्टिकुलर कैंसर और दिल की बीमारियों से इलाके में 4,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। मितेनी में लंबे समय से काम कर रहे एक कर्मचारी की मौत को भी उसी से जोड़ा गया। जियोवाना को अपने जैविक खेत में सब कुछ बदलना पड़ा। उन्होंने फल और सब्जियां उगाना बंद कर दिया और अपने जानवर मार दिए। अब जो बचे हैं वे पालतू जानवरों की तरह रखे जाते हैं। शुरू में वो डर गई थीं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ करने की ठानी। जियोवाना, मिकेला और भी बहुत सी माएं संगठित होने लगीं।
5: सबसे पहले तीव्र भावना तो गुस्से की थी, लेकिन महिलाओं और माओं के साथ आने से गुस्सा थोड़ा कम हुआ।

0: छात्रा माँ में नितिगातु कुस्ता।
1: अब वो समस्या को समझने और उसका समाधान निकालने के अभियान में बदल गया है।
0: अंदर ही नंसी तूतू इल प्रॉब्लेमा ए पोई आंके डी ट्रोवारी इंसेमे डेली सॉल्यूशनी।
2: उन्होंने प्रदर्शन किए, सम्मेलनों में हिस्सा लिया और अंत में केमिकल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे जीत गईं। कोर्ट ने पर्यावरण के गंभीर अपराधों के लिए कंपनी के 11 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई, लेकिन फिर एक जांच से पता चला कि पीफास का प्रदूषण तो दुनिया में दूसरी जगहों तक भी पहुंच चुका है। दिवालिया हो चुकी मितेनी कंपनी के प्लांट की मशीनरी भारत भेज दी गई। मिकेला किसी तरह इलाके के लोगों से संपर्क कर पाई, जिनमें एक्टिविस्ट वरुण सुखराज भी थे। वो उस गांव से हैं जहां मितेनी कंपनी की मशीनरी फिर से हरकत में आ गई और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के नाम से उत्पादन जारी है। इलाका रसायन उत्पादन का नया केंद्र बनने की उम्मीद रखता है। वरुण ने गांव में जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि नियम कानून की सख्ती से एक जगह चल रहा उत्पादन गायब नहीं हो जाता, वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, ऐसी जगह जहां उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। मिकेला का बनाया वीडियो समुदाय के बीच वायरल हो गया।
3: हमें पीफास के बारे में कुछ पता नहीं था। YouTube पर जब इटली के विरोध प्रदर्शन को देखा और वहाँ की स्थिति समझ में आई तो हमने और जानकारी जुटाई। तब जाकर हमें एहसास हुआ कि यहाँ बन रही ये चीज कितनी विषैली है।
2: लोग संगठित होने लगे। अप्रैल में 3,000 लोग सड़कों पर उतर आए। उनका नारा था, कोंकण की माओं को पीफास मंजूर नहीं। ये नारा इटली के मामे नो पीफास से प्रेरित था। उनका संदेश साफ है,
4: मैं मानती हूँ कि ये कंपनी बंद होनी चाहिए और उसके बंद होने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कोंकण की ये माँ पीफास को ना कहती है।
2: भारत में फिलहाल पीफास के उत्पादन की निगरानी या उस पर रोक लगाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसीलिए ये मुद्दा जन विमर्श से अमूमन गायब ही रहा। लेकिन यूरोप में कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस समस्या के एक अलग हिस्से पर काम कर रहे हैं। ज्यूरिख स्थित स्टार्टअप ऑक्सील ने बेकार पानी में न सिर्फ पीफास की शिनाख्त और मापन का बल्कि उन रसायनों को खत्म करने का तरीका भी खोज निकाला है। कंपनी की संस्थापक फजर मुश्ताक भारत में पली बढ़ी हैं।
5: मैं हमेशा मानती आई हूं कि पानी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं और उसी से मेरी जिंदगी का मिशन शुरू हुआ, जिसमें मैं चाहती थी कि पानी के बारे में कुछ करूं। पीफास पर मैंने काफी बाद में काम शुरू किया जब मैं स्विट्जरलैंड आई और मुझे एहसास हुआ कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में जहां पानी इतना साफ दिखता है, वहां भी पानी में अदृश्य रसायनों का संकट है। पीफास हैं, कीटनाशक हैं, दवाएं हैं जो कि नहीं होने चाहिए।
2: ऑक्सील ने एक मोबाइल कंटेनर बनाया जिसे पीफास का उत्पादन करने वाले औद्योगिक ठिकानों में ले जाकर स्रोत पर ही रसायनों को खत्म किया जा सकता है। कंटेनर के भीतर दूषित पानी को इस कनस्तर में खींच लिया जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनियों के साथ रसायनों का एक खास कॉकटेल पानी में मिलाया जाता है जो मजबूत केमिकल बॉन्ड्स को विखंडित कर देता है। आखिर में नुकसान ना पहुंचा सकने वाली चीजें बचती हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोराइड। साफ हुआ पानी पर्यावरण में छोड़ा जा सकता है। इस तकनीक से प्रति घंटा कुछ हजार लीटर पानी साफ किया जा सकता है। ये पीफास की मात्रा और ऊर्जा खपत पर भी निर्भर करता है।
5: ये टेक्नोलॉजी इस तरह डिजाइन की गई है कि हर कोई इसे वहन कर सकता है और इसमें कई विकल्प हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। हम उन्हें फॉरेन ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो ऊर्जा से जुड़ा बड़ा खर्च उठा सकते हैं, जैसे यूरोप में, या हम कम ऊर्जा में काफी धीमा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।
2: समाधान का ये एक हिस्सा दुनिया भर में काम कर सकता है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर अडॉप्ट करने के लिए जागरूकता और कानूनी सहायता भी जरूरी है।
6: रत्नागिरी जिले में केमिकल प्लांट द्वारा PFAS
2: अभी तो सिर्फ पर्यावरण में मौजूद पीफास को देखा जा रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन से बदलाव हुए हैं। इस साल हुए विरोध के बाद पीफास का पहली बार

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-203-400-02-03 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: कैनेडा विच रहंदियां इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
2: ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਆ ਸਕੂਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
3: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ
2: ਵਧੀਆ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
3: ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
2: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ
3: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868
2: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor
3: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868
4: ਫਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਗਰ ਲੈ ਲਈਏ
5: ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ
4: ਮਾਲੇ ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ
5: ਓਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
4: ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਓਪਨ 24 ਆਵਰਸ ਯੂਨਿਟ 2154-43-10-104 ਐਵੇਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਲ 403-460-4
6: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों कैलगरी में मौसम चेंज होता हुआ और अगेन थोड़ी गर्मी और रात में थोड़ी ठंडक तो प्लीज अपना ध्यान रखें और मौसम के साथ साथ अपना जो मिजाज है उसको भी फर्स्ट क्लास रखें स्पेशली रोड्स पर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि मौसम की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उसका अपने साथ साथ चेंज होना बहुत जरूरी है आज हम थोड़ा बात करेंगे कुछ जो इवेंट्स होने वाले हैं कैलगरी में और उसके अलावा कुछ म्यूजिक सुनेंगे सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नगर कीर्तन जो है हमारे कैलगरी का वो होने जा रहा है इस सैटरडे को तो प्लीज प्लीज प्लीज आपको गुजारिश है आपसे रिक्वेस्ट है सिटी ऑफ कैलगरी की तरफ से और इसके मुतालिक हमारे साथ पिछले वीक जुड़े थे कैलगरी पार्किंग के नुमाइंदे और उन्होंने आपसे बातचीत करी थी और ये बताया था कि कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन केस आप नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं या उसका हिस्सा बनने आ रहे हैं वहां पर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो देखने को आती है वो है पार्किंग हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि अगर हम लोग गाड़ियां कहीं पे खड़ी कर रहे हैं तो उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना एक प्रॉपर कह सकते हैं कि वे चाहिए अपने आप को ठीक रखने के लिए और मेरी गाड़ी जैसे मर्जी पार्क हुई हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट

जगह मिलनी चाहिए पाक करने की। ये एक सोच बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं वो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं देगी वो पार्किंग, या फिर मेरी गाड़ी ऐसी जगह ना खड़ी हो जो कि ट्रैफिक को प्रॉब्लम दे, मेरी गाड़ी ऐसी जगह ना खड़ी हो जो कि पेडेस्ट्रियंस हैं उनको प्रॉब्लम दे, और सबसे ज्यादा कहीं मेरी गाड़ी को टिकट ना मिल जाए या टो ना हो जाए मेरी गाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, और पिछले कई सालों से सिटी ऑफ कैलगरी देखती आई है कि स्पेशली बड़े ओकेजन्स पे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं और बहुत गाड़ियां टिकटेड और टो होती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अगर एक ऐसे ऑस्पेशियस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं तो प्लीज अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें, और इस चीज का ध्यान रखें कि जहां आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं उससे किसी और को तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब के आसपास कहीं पर, मेक श्योर कि आपकी गाड़ी जो है कोई क्रॉस वॉक पे ना खड़ी हो जहां से लोग पेडेस्ट्रियंस पास करते हैं, उसको ना ब्लॉक कर रही हो। कर्ब ब्रेक्स होते हैं जो कि रैंप्स होते हैं सड़क के ऊपर, जहां से बच्चों की जो बग्गियां होती हैं स्ट्रोलर्स जिसको कहते हैं, व्हीलचेयर्स पे जो लोग होते हैं वो लोग एक्सेस कर पाते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए, वो ब्लॉक ना करते हों। गुरुद्वारा साहब के आसपास बहुत सारे नो पार्किंग नो स्टॉपिंग के साइंस अगर हों तो उसका आप ध्यान रखें, वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा करके ना जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनका पहला काम यही होगा कि ऐसी गाड़ियों को टिकट करना और वहां से टो करना। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि बताए गए लास्ट टाइम, जिन पे कोई भी रियायत नहीं है, वो सीधा टो होते हैं। हम लोग कभी जल्दबाजी में ये नहीं देखते कि गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, जहां पे हमें जगह मिली हम वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं। फायर हाइड्रेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हैं मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां देखी गई हैं जो फायर जो आपका हाइड्रेंट है उसके विद इन 5 मीटर्स खड़ी होती हैं, वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है क्योंकि एक सेफ्टी इशू है। तो प्लीज ये आप ध्यान रखें कि जो गाड़ियां हैं जब आप वहां पर आते हैं पार्किंग करते हैं आसपास के जो नेबरिंग एरियाज हैं उसके अंदर आपने जो गाड़ी है वो प्रॉपरली खड़ी करी है और इन चीजों का ध्यान रखा है। उसके अलावा हमें जो उन्होंने फीडबैक दिया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज इट्स ऑल क्रिएटिंग अवेयरनेस ताकि हम लोग बच सकें गाड़ी टो होने से, गाड़ी टिकटिंग होने से, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप वहां पर दर्शन करके आते हैं गुरु घर से और उसका हिस्सा बनते हैं और मेला देखते हैं वहां पर जो लगा होता है, जब आप वापस आते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं जहां मैंने खड़ी करी थी, तब सारा जो हमारा एनर्जी जो बची होती है वो रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि हमें फिर भागना पड़ता है गाड़ी को वापस लाने के लिए जो कि साउथ ईस्ट में इनका टोइंग सेंटर है वहां से। अगर गाड़ी नहीं भी टो होती है तो पता चले उस पर टिकट लगी हुई है, और मिनिमम टिकट जो है वो $75 की है, $68 की है, तो आप सोच सकते हैं अननेसेसरी के पैसे हमारी जेब से निकल जाते हैं। जब हम गाड़ी को पार्क करते हैं ये चीजें तो हम जरूर ध्यान में रखें। उसके अलावा जो उनकी गुजारिश ये थी कि किसी के ड्राइववे के आगे गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप किसी का ड्राइववे ब्लॉक करते हैं उस इंसान को क्या पता काम पे जाना हो, क्या पता उन्होंने कोई इमरजेंसी कोई आ जाए, तो वो अपनी गाड़ी कैसे निकालेंगे। ड्राइववे हो गया, गैराज हो गया, बैक एलीज के अंदर अगर आप गाड़ियां पार्क करते हैं जो कि नैरो एलीज होती हैं, अगर उसके अंदर आपने गाड़ी खड़ी करी है तो गाड़ी वहां से टो भी हो सकती है, क्योंकि वो बैक एली को ब्लॉक करेगी और वो एक सेफ्टी हैजर्ड हो जाता है।

कभी ना भगवान ना करे अगर वहां पर फायर ट्रक आना हो या और कुछ वहां इमरजेंसी पड़ जाए और कोई ट्रैफिक नहीं निकल पा रहा है तो गाड़ियां वहां से टो हो सकती हैं. तो ये सब बातें सिर्फ अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हैं ताकि आप दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ियां पार्क करें. तो हम बात कर रहे थे किसी भी घर का जो गैराज है या फ्रंट ड्राइववे है, बैक ड्राइववे है, पार्किंग पैड है, उसको प्लीज आप ना ब्लॉक करें, क्योंकि अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो गाड़ी सीधा टो होगी. और जो मिस्टर टॉड ने बताया था पिछली बार, कम से कम आपको $300-$400 स्पेंड करने पड़ जाएंगे गाड़ी को वहां से लेके आने में, क्योंकि टोइंग फीस होती है और वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं, एडमिन फी वगैरह प्लस टिकट, तो बहुत कुछ आपको फालतू में जेब से निकालना पड़ेगा. और एक चीज का ध्यान रखें, वो है गाड़ियां जब आप पार्क करते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जैसे सेफवे है, सुपर स्टोर है जो वेस्ट विंड पार्क के पास में है और वहां कई प्लाजाज हैं, अब वो जो प्लाजा के ओनर्स हैं, अगर आपकी गाड़ी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़ी हुई है, उनके पास ये राइट है कि वो उसको टो करवा दें, उनके पास वो राइट है कि या उसको वो टिकट दिलवा दें, क्योंकि आपने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे गाड़ी खड़ी करी है. आपके हिसाब से लगता है, हमें लगता है कि यार ये तो सुपर स्टोर ही तो है या सेफवे ही तो है या किसी का प्लाजा ही तो है तो क्या हो गया, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में गिना जाता है दोस्तों. और अगर हम अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे लगाते हैं जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सेम थिंग, कोई आके हमारे ड्राइववे पे गाड़ी खड़ी करके चला जाए तो हमें कैसा लगेगा. तो सेम वे अगर वो चाहें तो आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी अगर वहां खड़ी है तो उसको वो टो करवा सकते हैं. इन्फोर्समेंट को बोल के टिकटिंग के लिए वो लोग ऑफिसर्स को बोल सकते हैं आने के लिए वहां पर. तो फालतू का एक अननेसेसरी स्ट्रेस और खर्चा आपको करना पड़ सकता है. अगर आप उनसे बातचीत कर लें, जैसा कि उन्होंने कहा लास्ट टाइम कि अगर आप उनसे बातचीत कर लें और उनसे कहें कि भाई मैं यहां बिजनेस के लिए आया हूं, मैंने कुछ ग्रोसरी करी है लेकिन मैं कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी करके जा रहा हूं, तो एक अलग बात है. आप उनसे परमिशन ले लें, उनको बता दें, तो एक अलग चीज है. लेकिन किसी भी जगह पर अगर आप, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर खड़ी करते हैं गाड़ी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनसे पूछकर वहां गाड़ी खड़ी करें, वरना बहुत चांसेस हैं कि गाड़ी आपकी टिकट या टो हो जाएगी. अगर आप कोशिश करें कि अगर आप ग्रुप्स में आ रहे हैं, आपकी फैमिली आ रही है, तो एक इंसान आपको छोड़ के और गाड़ी को अगर आप आसपास कहीं रहते हैं घर वापस ले जाएं और वो खुद ट्रांजिट से आ जाएं, क्योंकि ट्रेन बसेस सब अपने बहुत ज़्यादा वहाँ पर, जहाँ पे अपना नगर कीर्तन होता है वहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, उससे आपको स्ट्रेस नहीं होता. तो सिटी ऑफ कैलगरी की तरफ से आप सबको यही प्रार्थना है आप सबसे कि प्लीज़ नगर कीर्तन वाले दिन आप पार्किंग का विशेष ध्यान रखें. कोशिश करें कि कम से कम तकलीफ आपकी पार्किंग से ना ही आपको हो ना ही बाकी लोगों को, ताकि बाकी लोग भी उस दिन को एंजॉय कर सकें और कोई कंप्लेन ना हो. लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार मेरे को काम पे जाना है और मेरे घर के आगे ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं किस तरह से काम पे जाऊंगा, मे बी उनको ऊबर करनी पड़ेगी या टैक्सी करनी पड़ेगी, या जब तक वो गाड़ी टो नहीं होती या वो टिकट नहीं होती तो, लेकिन परेशानी जरूर हो जाती है, किसी घर में इमरजेंसी भी हो सकती है दोस्तों. तो प्लीज प्लीज प्लीज अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें और जितना हो सके गाड़ी को नगर कीर्तन वाले दिन प्रॉपरली खड़ा करें, ताकि ना ही आपको तकलीफ हो ना ही किसी और को तकलीफ हो. तो ये मैसेज था सिटी ऑफ कैलगरी की तरफ से, पार्किंग डिविजन जो है, और वो चाहते हैं कि आप वो दिन इंजॉय करें और बाकी भी जो लोग हैं और समुदाय के, वो उनको भी कोई तकलीफ ना हो. आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM, प्रोग्राम आपकी आवाज. आज का जो प्रोग्राम है वो एम्पावर करते हैं YYC होम केयर, जिनका मानना है केयरिंग फॉर यू

0: Right at home. अगर आप उनसे राब्ता करना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर 825-760-0983. Direct billing is available. वो कहते हैं कि अगर आप अपनी कोई services लेते हैं तो direct वो invoicing कर सकते हैं. आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है अगर आप उनकी services के लिए qualify होते हैं. दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर.
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान. ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा सामान. फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम. अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर. फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी.
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा. कीमतां कट ते क्वालिटी A1.
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दा कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां. हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक.
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690.
4: ओहो आज फिर
5: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने, तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच, तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060, जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
6: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटा दा लगदा है. होर ता होर ट्रका दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
5: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन. बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस, 587-832-1208.
7: तुहाडे घर दे फर्नीचर दियां सब लोड़ां पूरियां करन दे समर्थ ब्रिक क्लीयरेंस सेंटर. मैट्रेस, सोफा सेट, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स ते होम डेकोर दियां जानदार वैरायटियां ते शानदार डीलां. जेकर तुसी भी अपने सोने घर नू चार चन्न लगाउणा चाहुंदे हो तां अज ही कैलगरी सबडिविजन विच पैंदे ब्रिक क्लीयरेंस सेंटर ते पहुंचो. इन्हां दियां डिटेल्स हर हफ्ते सांझा टाइम्स अखबार दे विच छपदियां ने. पता है 3451 सनरिच वे, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. फोन नंबर 403-726-6200, 403-726-6200.
8: बड़े सोचां च पए हो वीर जी, की गल होगी?
5: थक गए हैं घर लब लब के. कैलगरी च घर खरीदना तां हुण बड़ा ही औखा.
8: तुसी घर चंद्रमा ते लभदे होणे, कैलगरी च नहीं. आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा.
5: कर लिया जी नोट. फोन नंबर 403-618-2112.
8: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल.
5: अच्छा जी, अरुण कौशल लभ के देणगे सानू घर?
8: जी हां, कल्ले घर नहीं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल, घर खरीदना होवे जां वेचना, प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ. ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ.

0: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4036182112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ।
1: सो दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था मैंने, एक आज थोड़ा गीत संगीत होगा और साथ में इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी जाएगी। तो आइए गाना सुनते हैं। आज के मौसम के हिसाब से आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। मेरा फेवरेट गाना है। आई होप यू विल लाइक इट टू। मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: आई थिंक दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो उसको मैं फिक्स करता हूं, लेकिन जब तक मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये मैसेजेस और सुने और तब तक मैं इसको फिक्स कर देता हूं।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ़ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
1: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवाएं दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
2: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਟਰਸ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸੰਗਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਜ ਵੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4037266200, 403-726-6200,

सो दोस्तों, आई होप आपको ये गाना पसंद आया होगा. अगेन, हैरी मैथसेजल फिल्म का ये सॉन्ग अरिजीत सिंह जी ने गाया हुआ. बहुत ही एक सूदिंग सॉन्ग, प्लस लिरिक्स बहुत अमेजिंग है. दूसरी चीज जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, वो है स्ट्रीट क्लीनिंग. कैलगरी के अंदर हर साल स्ट्रीट क्लीनिंग करी जाती है और डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में कैलगरी के जो सड़क है उसको साफ करा जाता है. आपने वो देखा होगा, कंकर छोटे छोटे जो हैं वो सड़क पे बिखरे होते हैं. वो इसलिए होते हैं क्योंकि सर्दियों में वो कंकर डाले जाते हैं ताकि फ्रिक्शन रहे सड़क के ऊपर. बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वहाँ पर डाले जाते हैं बर्फ के ऊपर, उसको पिघालने के लिए, उस ताकि वो मेल्ट हो जाए. तो स्ट्रीट क्लीनिंग इस समय चल रही है कैलगरी के अंदर. प्लीज ध्यान दें साइनेजेस के ऊपर, क्योंकि जो मिस्टर टॉड ने पिछली बार बताया था वो ये था कि $120 की टिकट है अगर आपकी गाड़ी पार्क होती है जिस दिन स्ट्रीट क्लीनिंग हो रही है, और वहां पे पार्किंग बैन होता है. तो अगर आपकी गाड़ी उस पार्किंग बैन के दौरान खड़ी हुई है तो $120 की टिकट आपको मिल सकती है. उसके अलावा गाड़ी के टो होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर स्ट्रीट क्लीनर्स को लगता है कि भाई मेरे को यहाँ सफाई करनी है, और वो हमारी बेहतरी के लिए ही है, हमारे लिए ही है, वो उसमें सिटी का कोई अपना

पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिटीजन्स के लिए ही करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी उसमें उसके दौरान खड़ी है तो वो टो भी हो सकती है। अब अगर हम टो की बात करें तो फिर 400-500 का खर्चा और साथ में टिकट। और किस लिए कि हमने जरा सी अनदेखी करी और हमने साइंस नहीं देखे या हमने ध्यान नहीं दिया या हम भूल गए कि आज हमारी हमने साइन देखा लेकिन भूल गए कि भैया स्ट्रीट क्लीनिंग होने वाली है। अब भूल तो हम लोग गए लेकिन उसका रिपरकशंस काफी हो सकते हैं। तो प्लीज अपनी स्ट्रीट पर ध्यान रखें कि कहां पर साइंस हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो सिटी ऑफ कैलगरी कहती है कि वेबसाइट है calgary.ca/sweep। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और अपना एड्रेस डालेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि किस दिन आपके एरिया में स्ट्रीट स्वीपिंग होनी है। यूजली 8 से लेके शाम को 4 बजे तक की चलती है। एक दिन के लिए सिटी ऑफ कैलगरी आपसे अनुरोध करती है कि अपनी गाड़ियों को या तो आप ड्राइववे पे रखें, गैराज में खड़ा कर दें, या आप अगर आप यू नो वीकडेज में काम नहीं करते, यूजली ये जो स्ट्रीट स्वीपिंग है मंडे टू फ्राइडे में ही होती है, और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो प्लीज जो गाड़ियां हैं उसको एक दिन के लिए उस रोड से हटा दें जहां से वो सफाई होनी है। दोस्तों ये हमारी भलाई के लिए ही है। और जो मैं कह रहा था कि calgary.ca/sweep, वहां पर एक जगह आती है उस वेब पेज पे जहां पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं और सिटी आपको बता सकती है उस वेबसाइट के माध्यम से कि किस दिन आपके एरिया में स्ट्रीट स्वीपिंग होनी है। दूसरा, आप 311 कॉल कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। तीसरा, साइनेजेस तो है ही है, तो साइनेजेस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा किस दिन आपको गाड़ियां सड़क पे नहीं खड़ी करनी अपने इलाके में ताकि आपकी जो स्ट्रीट की सफाई हो सके। 8 से लेके शाम को 4 बजे तक ये सफाई अभियान चलता है। एक चीज और जो उन्होंने बहुत एम्फेसिस देके बोली वो ये था कि भाई लोग जो हैं वो गाड़ियां दोबारा खड़ी कर लेते हैं अगर एक बार वो देखते हैं कि भाई आज चलो सिनेरियो वो ले रहा हूं जहां पे एक बार स्ट्रीट स्वीपर्स आए और उन्होंने सड़क साफ करी और लोगों ने देखा कि हाँ भाई सड़क साफ हो गई है, चलो अब मैं दोबारा गाड़ी खड़ी कर सकता हूं। तो मिस्टर टॉड ने ये बताया था कि बहुत सारी टिकटें लास्ट टाइम ऐसी इशू हुई थी जहां पर लोगों ने देखा कि भाई गाड़ी पार्क मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरी सड़क जो है वो साफ हो चुकी है। ऐसा मत करें। उनके हिसाब से जो पार्किंग बैन है वो एक टाइम के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 से लेके शाम को 4 बजे तक। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट स्वीपर्स होते हैं उनसे, क्योंकि वो मशीन के थ्रू ही करते हैं, तो कई बार मशीन पूरा जो कंकड़ है वो नहीं उठा पाती तो उनको दोबारा घूम के आना पड़ता है उस स्ट्रीट के ऊपर उसको साफ करने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ही हूं और मैंने देखा कि यार वो तो साफ करके चले गए हैं, अब मैं अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकता हूं क्योंकि मेरी स्ट्रीट तो है वो साफ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कई बार वो वापस भी आ सकते हैं। इसलिए वो एक टाइम लिमिट रखते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक अपनी गाड़ी को आप सड़क पे ना खड़ी करें। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो इसलिए थोड़ा सांस चढ़ता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं और थोड़ा सांस उखड़ रहा है। तो जब आप गाड़ी को दोबारा खड़ी करते हैं तो आप रिस्क लेते हैं, अगेन टिकट आपको इशू हो सकती है या अगेन गाड़ी टो भी हो सकती है। तो जितनी देर

सो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर. कल इंडिया में 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए और रिजल्ट्स सामने हैं. 3 स्टेट्स में बीजेपी ने अपने अलायंसेस के साथ जीत हासिल की, जो कि है पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल. केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके, जो कि सुपरस्टार विजय, जो कि एक जाने माने साउथ इंडियन मूवीज के सुपरस्टार हैं, उनकी नई नवेली पार्टी ने हिला के रख दिया और बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की अपनी नई पार्टी से. उसमें एक सज्जन को टिकट दी गई जो उनके ड्राइवर का बेटा है और उसने भी जीत हासिल करी अपनी सीट के ऊपर. तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम किया उन्होंने और एक आम आदमी को ये बताया कि आप भी जीत हासिल कर सकते हैं. वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन 15 साल के बाद अब बंगाल में बीजेपी का बोलबाला और बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी. असम के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ. तो अगर नक्शल में देखा जाए तो बहुत ही कम राज्य अब हिंदुस्तान में रह गए हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसमें से तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, झारखंड, पंजाब, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है. अगेन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह से जो ये सरकार है वहां काम करेगी. लेकिन अगर हम फिल्मों की बात करें तो अगर बॉलीवुड की बात करें तो सुपरस्टार विजय आगे आए हैं और पश्चिम बंगाल में सीएम की रेस में मिथुन चक्रवर्ती साहब, जो कि एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका नाम सामने आया है और सुवेंदु अधिकारी उनका नाम सामने आया है. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर. एक और खबर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि काफी बड़ी खबर बन रही है हिंदुस्तान के अंदर.

अगेन वो रिलेटेड है हमारे अपने पंजाब से. पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 11th ग्रेड के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, और जब बात समझ में आई तो ये पता चला कि उसको कुछ हार्श पनिशमेंट दी गई थी स्कूल टीचर की तरफ से उसके स्कूल में, जिसको लेके वो बहुत परेशान था, और अल्टीमेटली उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी. बहुत दुखदाई घटना है दोस्तों ये. घटना जो है बहुत सवाल इकट्ठे करती है, खड़े करती है कि क्या स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा लीनियंसी होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, या सिर्फ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि इस पेशे को बदनाम करते हैं. बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जहां पर देखने को मिलता है कि जो टीचर है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी भी जगह की या बच्चों पे निकालता है या निकालती है. उनको मारा पीटा जाता है बच्चों को, या सज़ा इस तरह से दी जाती है कि बच्चे, आपको पता ही है इस समय इंडिया में कितना समर में कितनी धूप होती है कि सर बाहर खड़ा कर दिया क्लासरूम से कि आप धूप में खड़े रहिए. तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 2-2.5 घंटे धूप के अंदर खड़ा रहेगा. तो एक बहुत बड़ी घटना जो है ये सामने आई है, जिसने काफ़ी सवाल पैदा किए हैं गवर्नमेंट के सामने कि किस तरह से स्कूल्स का जो है लिखा जोखा सामने ज़रूर होना चाहिए, और कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की तरफ से और इवन प्रिंसिपल की तरफ से भी होनी चाहिए. बच्चे भी कई बार उल्टी सी हरकतें करते हैं, बट अगेन फिर बड़ों और बच्चों में क्या फ़र्क रह गया. तो इसलिए ये एक न्यूज़ बहुत इस समय चर्चा में है. पंजाब से एक और न्यूज़ आई, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया हमारे एक जाने पहचाने फिल्मी कलाकार जो कि पंजाबी फिल्मों से हैं, गिप्पी ग्रेवाल साहब. उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी अकाल, जो कि वाकई बहुत बढ़िया फिल्म थी और हिस्टोरिकल फिल्म थी. एज अ डायरेक्टर उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया पिछले कुछ दिनों में. तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे पंजाबी फिल्म्स के लिए, क्योंकि अगेन जब इस तरह के अवार्ड्स हमारी एक्टर्स को डायरेक्टर्स को मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनकी मेहनत है और उनकी अचीवमेंट को ज़रूर सराहना चाहिए. अगर हिस्टोरिकल फिल्म्स की बात करें तो पीछे एक और फिल्म रिलीज हुई शिवाजी के ऊपर, और ये फिल्म में जो एक्टर हैं वो हैं मिस्टर रितेश देशमुख, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, और उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जो किरदार है वो भी निभाया है. और आजकल के आंकड़ों के हिसाब से पिक्चर बहुत सुपरहिट जा रही है और काफी सराहा जा रहा है इस मूवी को. एक और न्यूज जो मैं कैलगरी से आपसे शेयर करना चाहता हूं, आचार्य विनोद सौदियल साहब, जो कि इनको सब हम लोग पंडित जी बोलते हैं, सब जानते हैं उनको, आपको इनवाइट करते हैं अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग, ज्वाइन अस एंड बिकम अ यजमान फॉर द ऑस्पिशियस श्रीमद भगवत कथा, जो कि होने जा रही है जुलाई 12 से जुलाई 18 तक जेनेसिस सेंटर नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में. उसके बारे में बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे. तो लेकिन आज मैं चाहता था, थोड़ा टाइम है तो आपसे ये न्यूज शेयर करी जाए. ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिंदू सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और कथा व्यास करेंगे आचार्य विनोद जी. तो आप जरूर इसका हिस्सा बने और एंजॉय करें इस ऑस्पेशियस मूवमेंट को. एक और खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो पीछे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ बनी. एक बारगी डैम है जहां पे

0: बोट क्रूजेस चलते हैं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये बारगी डैम होता है, अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक बोट डूब गई। लेकिन ये इसलिए एक बड़ी खबर बनी क्योंकि वहां पर एक मां को एक बच्चे के साथ, मतलब कि उन दोनों की डेड बॉडीज मिली और उस मां ने उस बच्चे को अपनी छाती से चिपका रखा था और एक वो बहुत दुखदाई सीन था। लोग उसको देखकर, जो उनको जानते भी नहीं थे, वो भी रोए। पूरा सोशल मीडिया इससे भरा रहा क्योंकि ऐसा सीन आमे फिल्मों में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में बहुत ना ही देखने को मिले तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन वो सीन देखकर हर एक की आंखों में आंसू आ गए कि उस मां ने अपने बेटे को एक पल भी अपने से दूर नहीं किया। और वो कहते हैं कि वो बच सकती थी क्योंकि उसको तैरना आता था, उसकी फैमिली ने बताया, लेकिन बच्चे को नहीं आता था तो उसकी मां ने उसको कहीं जाने नहीं दिया, अपने साथ ही चिपका के रखा। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बच पाई। तो एक बहुत बड़ी जो ये ट्रेजेडी ये इंडिया में हुई। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। थोड़े मैसेज सुनते हैं, थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं दोबारा आपसे बातचीत करता हूं। सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर।
1: पूरा साल हो गया गाना सुनती हूं, बस कैलगरी च कार लैन दियां फीलिंग आई ले जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने दा मन बना लिया है। उना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिए है।
2: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुन कार एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
1: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
3: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
4: की होया?
3: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
4: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
5: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
6: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
5: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं एक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
7: अपने घर जा ऑफिस दा समान मूव कराना होवे ता स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
0: सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोई भूल चूक होए तो मुझे माफ कीजिएगा। आज का प्रोग्राम एम्पावर किया YYC होम केयर सर्विसेज ने। उनका फोन नंबर है 8257600983। अगर आपको उनसे कुछ भी रابطہ करना है तो प्लीज आप उनसे बातचीत करें। आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार सेम टाइम पर 8 से 9। तब तक लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।
3: कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
4: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच